0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जाँच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच

0: राजपराना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
1: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी उड़ीसा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
3: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
4: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुँच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M. Pallurethi की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
6: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन

0: AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab pharmacy officers' recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable.

नुजेन्नै समायाव आदा आदा होन्ना मानोथो बुरखायदोंमोन मानोथो बरायदोंमोन नुजे

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: 100 सुखों का एक इलाज, कल के लिए संवारो आज।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत विचार के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ श्रोताओ, यदि आज को ठीक से नहीं संवारेंगे तो सुनहरे कल की आशा करना व्यर्थ है।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे जी और संजय मार्कंडे जी लिखते हैं,
3: आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी सादर नमस्कार। जैसे आपने सब्जियाँ, नृत्य, सभ्यता, सौर मंडल और विज्ञान और भूगोल पर बहुत अच्छी जानकारी दी, ऐसे ही हमारा सुझाव है कि बच्चों के लिए प्राचीन इतिहास से ऋषि, महर्षि, महान पुरुषों, राजाओं पर भी जानकारियां जरूर दें, ताकि हमारे बच्चे भी सुने और प्रेरणा लें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, धन्यवाद।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम प्रयास करेंगे कि आपको इन विषयों पर भी जानकारी जरूर दें।
3: गाँव ढोडरी घोटिया, जिला मोहल्ला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
2: ग्राम ममना सरीला, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा लिखते हैं, सभी कार्यक्रम जरूर कोई न कोई शिक्षा देकर जाते हैं।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे श्रोता देशदीप दास जी,
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी, इसमें आप सबका एक बार फिर से स्वागत है।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की,
2: जिन्हें शायद महात्मा गांधी या अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम नहीं था।
3: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम है जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पिंगली वेंकैया हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक यानी डिजाइनर थे। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पिंगली वेंकैया हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक यानी डिजाइनर थे।
2: उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
3: श्रोताओं, जब वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी।
2: जी।
3: उन्हीं दिनों उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
2: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को चुना गया। गांधी जी के सुझाव से उन्होंने पहले तिरंगे में सफेद पट्टी और चरखा शामिल किया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का तिरंगा चुना गया।
3: श्रोताओं, स्वतंत्रता से कुछ दिनों पहले यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। अशोक चक्र प्रगति, गतिशीलता और न्याय का प्रतीक है। यह

0: सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर बना हुआ है।
1: वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। ये भी जानिए श्रृंखला की इसी कड़ी के द्वारा श्री पिंगली वेंकैया जी को हमारी श्रद्धांजलि कि उनके प्रयासों और चिंतन के फलस्वरूप आज हमारे पास तिरंगा है।
0: और अब श्रोताओं, आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है
1: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। कृपया नोट कर लीजिए और प्रश्न का उत्तर और संदेश जरूर भेजिए।
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। और अब बारी है आज के कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं पहला कार्यक्रम, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद।
2: पंद्रह अगस्त सन 1947 ईस्वी से पहले भारत में अंग्रेजों का राज था। आजादी के लिए भारतवासी कड़ा संघर्ष कर रहे थे। सन 1857 ईस्वी में देश के विभिन्न भागों में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद से यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। भारतीयों में आजादी की चिंगारी सुलगाने का काम विशेष रूप से क्रांतिकारियों ने किया। भारत मां की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रमुख है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। बचपन से ही चंद्रशेखर बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली एक माचिस की तीली जलाकर उससे खेल रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जब एक तीली को जलाने से लौ की इतनी रोशनी होती है तो सब तीलियों को एक साथ जलाने से न जाने कितनी रोशनी होगी। उनके सब साथी इस विचार से बहुत खुश हुए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी तीलियों को एक साथ जला सके, क्योंकि लौ में तेज आंच भी होती है। एक तीली की आंच झेलना तो मामूली सी बात थी, लेकिन सब तीलियों

को एक साथ जलाकर खुद जल जाने का खतरा कौन मोल लेता? चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं सब तीलियों को एक साथ जलाऊंगा। और उन्होंने यह करके भी दिखा दिया। तमाशा तो खूब हुआ, लेकिन उनका हाथ बुरी तरह जल गया। उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। जब चंद्रशेखर आजाद कुछ बड़े हो गए तो उनके चाचा ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए काशी भेज दिया। लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और वे बिना बताए अपने बाबा के घर अलीराजपुर भाग गए। वहां उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने भीलों से तीर कमान चलाना सीख लिया और थोड़े ही दिनों में वे एक बहुत अच्छे तीरंदाज बन गए। जब इनके बाबा को इस बात का पता लगा तो उन्हें फिर काशी भेज दिया गया ताकि उन भीलों से उनका साथ छूट जाए। इस बार वे काशी में टिक गए। उन दिनों काशी में कुछ दानी लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था की जाती थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे। लेकिन इसमें भी उनका मन नहीं लगा, इसलिए कभी तो वे गंगा में घंटों तैरा करते कभी कथा पढ़कर सुनाने वालों के पास बैठकर रामायण और महाभारत की कथाएं सुना करते। कई वीरों की कहानियां तो उन्हें जुबानी याद हो गई थी। बात सन 1919 ईस्वी की है। बैसाखी का दिन था। चंद्रशेखर अभी 10-11 वर्ष के ही थे। पंजाब के अमृतसर शहर में एक भयंकर हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था, जिसमें से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही तरफ एक संकरा सा रास्ता था। एक दिन जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी कि इतने में सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहां अचानक आ धमका। और उसने बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश

0: देश दे दिया। निहत्थे लोगों पर सेना गोलियां बरसाए ही चली जा रही थी। इस गोलीबारी में लगभग 1000-1500 लोग मारे गए और कई हजार घायल हो गए। अंग्रेजों के इस अत्याचार के कारण सारे भारत में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। आजाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। इस भयंकर हत्याकांड के बारे में सुनकर वे क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा तो आजाद भी उसमें कूद पड़े।
1: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
0: यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कचहरी में मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा,
2: तुम्हारा नाम क्या है?
0: उन्होंने अकड़ कर उत्तर दिया,
3: आजाद।
2: तुम्हारे बाप का नाम क्या है?
3: स्वाधीनता।
2: तुम्हारा घर कहाँ है?
3: जेल खाना।
0: मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी,
2: इसे ले जाओ और 15 बेंत लगाकर छोड़ दो।
0: उन दिनों बेंत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूर था। इस घटना का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है।
4: उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया गया। बेंत एक एक करके उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते। वह हर बेंत पढ़ने पर चिल्लाता था,
5: महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय।
4: वह लड़का तब तक नारे लगाता रहा,
5: महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय,
4: जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं पड़ा।
0: इस घटना के बाद से ही वह बालक आजाद के नाम से मशहूर हो गया। उन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना एक संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आजाद उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसा के तरीकों से भारत नहीं छोड़ेंगे।
6: इंकलाब जिंदाबाद,
7: इंकलाब जिंदाबाद,
8: इंकलाब जिंदाबाद।
0: उनको भय दिखाकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। क्रांतिकारी दल के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहां से मिले। यही कारण था

कि संगठन के कुछ सदस्यों ने सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के निकट चलती रेलगाड़ी को रोक लिया और उस डिब्बे को लूट लिया जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना के एकदम बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह आजाद को गिरफ्तार न कर सकी। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा इनाम घोषित किया गया। आजाद ने भी ठान ली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। हां, मरने के बाद ही कोई मेरी लाश को गिरफ्तार कर पाएगा। काकोरी कांड में गिरफ्तार हुए अन्य लोगों पर मुकदमा चलता रहा। उस समय चंद्रशेखर आजाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिपे रहे और बंदूक चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी कांड के मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई। ये लोग हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का उत्तरदायित्व आजाद को सौंपा गया। उन्हें भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से चलने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शन में पुलिस ने लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई कि वे बुरी तरह घायल हो गए। इन चोटों के कारण कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश में तीव्र आक्रोश की लहर दौड़ गई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जय गोपाल ने यह तय किया कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मार डालना चाहिए। 17 सितंबर 1928 ईस्वी के दिन इन लोगों ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला लेकिन पुलिस इनमें से एक को भी न पकड़ सकी। ब्रिटिश सरकार आजाद को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेना चाहती थी लेकिन वे किसी भी तरह उसके हाथ नहीं आ रहे थे। बात 27 फरवरी सन 1931 ईस्वी की है। दिन के 10 बज रहे थे। आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड

0: पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे थे। इतने में दो पुलिस अधिकारी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक आजाद को पहचानता था। उसने फौरन लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिंटेंडेंट नाट बावर को इस बात की खबर दे दी। नाट बावर खबर पाते ही अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर जीप से अल्फ्रेड पार्क जा पहुंचा। उसने आजाद से कुछ दूरी पर अपनी जीप रोक दी। पुलिस की जीप को देखकर आजाद का साथी तो भाग गया, किंतु वे वहीं डटे रहे। नाट बावर ने आजाद पर अपनी पिस्तौल से गोली दाग दी। यह गोली आजाद की जांघ में जा लगी। जवाब में आजाद ने भी नाट बावर पर गोली चलाई। उनकी गोली नाट बावर की कलाई पर लगी, जिससे उसकी पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उधर से और भी पुलिस वाले आजाद पर गोलियां बरसाए चले जा रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाट बावर भागकर एक पेड़ की ओट में जा छिपा। आजाद के पास हमेशा काफी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नाट बावर जिस पेड़ की ओट में था, आजाद मानो उस पेड़ को छेद कर नाट बावर को मार डालना चाहते थे। पूरे एक घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। कहते हैं जब आजाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने खुद को मार ली। इस प्रकार एक महान देशभक्त योद्धा ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जा सकेंगे। जब आजाद का शरीर बड़ी देर तक जमीन पर निश्चल पड़ा रहा, तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े। किंतु आजाद का आतंक इतना अधिक था कि पुलिस वालों ने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर पक्का निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। आजाद इलाहाबाद में जिस स्थान पर शहीद हुए थे, वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। आज भी वहां जाने वाला हर भारतीय उस महान देशभक्त को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। श्रोताओं, आज जिस आजादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसका सबसे अधिक श्रेय जाता है इन अमर शहीदों को, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दिया। उमंग कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें हमारा शत शत नमन। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है।
2: तो मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को तकनीकी टीम कुसुमलता, जगबंधु, चेतना, वीरेंद्र और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सिर्फ कलाकार कहना उनके योगदान को छोटा कर देना होगा। उन महान नामों में से एक हैं श्रीदेवी जी, ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी, नृत्य और भावनाओं से कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया।

फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। बचपन से ही उनके अंदर अभिनय की एक अद्भुत प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। इतनी कम उम्र में कैमरे के सामने सजता से अभिनय करना और अलग अलग किरदारों को महसूस करना उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय सिनेमा से की और तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और देखते ही देखते बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में उनका नाम शामिल हो गया।

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि उन्होंने ऐसे दौर में महिला कलाकारों को एक अलग मुकाम दिलाया जब फिल्मों में अक्सर पुरुष कलाकारों को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। श्रीदेवी जी ने अपनी प्रतिभा की सहायता से ये साबित कर दिया था कि महिला कलाकार भी एक फिल्म को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

0: चांद भी शर्मा जाता था। एक अदा में 100 किस्सा था, नाम उसका श्रीदेवी था। और इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम परागमाला लाइव।
1: परागमाला परागमाला
2: পৰাগমালা লাইভ শুনিলে আগবঢ়ালে ত্ৰিনয়নী মালাকাৰে।

0: राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী দুপৰীয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ সৈতে মই অৰুণিমা গোস্বামী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले

0: महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Kerala Alteration

0: System is currently located northwest of Canning, around 40 kilometers southeast of Kolkata and 130 kilometers east of Medinipur. Under its influence, almost all districts of South Bengal are likely to receive rain today. The Met Office has issued a red alert for extremely heavy rainfall in Bankura and West Medinipur. An orange alert for heavy to very heavy rainfall is in force in Purulia, Jhargram, East Medinipur and West Bardhaman. Other districts are under a yellow alert for scattered rainfall. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Heavy rain continues to batter Odisha under the influence of the depression over the Bay of Bengal, causing flood-like conditions in several northern districts. Rising water levels in Burabalanga, Jalaka and Kansabasa rivers have heightened concerns in Balesar and Mayurbhanj districts. The Indian Meteorological Department has forecast more rainfall over the next 24 hours. The IMD issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Gangetic, West Bengal and Odisha for the day. Heavy rainfall also expected over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Konkan, Goa, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and parts of Northeast India till tomorrow. In Canadian Open Tennis, defending champion Ben Shelton will face Brandon Nakashima after both Americans advanced in straight sets to the final in Montreal this morning. The final will be played in Montreal tomorrow. American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar 7-6, 6-4 in the men's single semifinals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Both Houses of Parliament adjourn sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day for celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा अब समाचार विस्तार से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के

0: विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
6: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में

0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
5: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
6: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के

0: नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रादा फरायदों मनजित बसुमतारिया खरसा आसामाव जानाय गिथावना फोजोबस्रांबानायाव 1000 कौटिनिबो बांसिन रांनि खहा जादों होननानै गिबिमन्त्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दिसपुराव मैया मोनसे रादा मेलाव शिबसागर सरायदेव जोरहाट आरो गलाघाट जिल्लायाव बानायाव जानाय खहा सुफुंनाय आरो सरकारा लानाय बिथांखिनि गुवारै फोरमायना गिबिमन्त्रि बिथाङा बुङोदि शिबसागर आरो सरायदेवखौ गोदान महराव साजायना लाबोनायनि सानदांनाय जादों बिथाङा बुङोदि हादरसा सरकारा बानायाव बांसिन खहा जानाय नेपाली खुटि माजगाव बामुनपुखुरि कमलाबस्ति ओनसोलाव गोहोम गोलैजानाय सुबुंफोरनो गोलाव समसिम मावफारिनि जोहै मदद होनायनि बागै साननाय जादों बिथाङा लोगोसे बुङोदि गोबां बिबांनि जुनार दोहोन खहा जानाय ओनसोलफोराव गाइखेर दिहुननाय मिरु खालामनो साननाय जागोन हादरसा सरकारा बोखांनाय आरो अनसुंथाय अभिजान माबादि सिगांलांनाय जादों बेनि बागै मख'नानै ड. शर्माया बुङोदि बाना खहा खालामनाय जिल्ला गंब्रैनि मोन 64,891 न'खरनो दासिम 15,000 राङै 97,34 रां दिहुनना हरबाय बेनि अनगायैबो जिल्ला गंब्रैनि 400,000 न'खरनो 1 आगस्टनि अरुणोदय दोहोन 2,500 रांसिम बांहोनाय जादों होननानै गिबिमन्त्रि बिथाङा मख'यो बिथाङा बुङोदि बानायाव जानाय खहानि सुमोन्थायनि थाखाय गोहोम गोलैजानाय ओनसोलफोराव सार्भे खालामनाय जादों हादरसानि बावैसोनि बानायाव खहा सिलिंखारनि मुङाव दासिम गुबुन गुबुन आयदायाव दिहुनना हरनाय दोहोन राशिनि बागै फोसावना गिबिमन्त्रि ड. शर्माया बुङोदि दासिम गं 793 फरायसालिखौ फाहामफिननायनि थाखाय 2,00,000 राङै हरनाय जादों आरो दासिम 90% फरायसालियाव फिन फराफारि फोरोंनाय जागायबाय खरसा आसामनि गंब्रै जिल्लानि गं 254 फरायसालियाव 17 आगस्टनिफ्रायसो फराफारि फोरोंनाय जागोन होननानै गिबिमन्त्रि बिथाङा फोसावो ओरैहाय हादरसानि बानानि थासारिया मोजां जादोंब्लाबो गं 7 जिल्लानि माखासे गुवार ओनसोला दासिमबो बानानि गोहोमावनो गोलैनानै दङ दासिम बानायाव गं 433 गामिनि 86,832 सुबुङा सैनांनायजों लोगोसे 10,884.27 हेक्टर आबाद हाया खहा जादों बानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया 104 जाहैबाय भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ सानसे साननैयाव गुवाहाटी सोहोर आरो बेनि साखाथिनि ओनसोलफोराव अखा मोफ्लामनानै जुब जुब अखा हानो हागौ होननानै सिगांग्रो बोथोरनि रादाब होदों बिफाना फोसावनाय बायदियै दिनै गुवाहाटी आरो बेनि सेरनि ओनसोलफोराव अखा मोफ्लामनानै जाख्रिसे जाख्रिनै अखा हानायनि सम्भाबना दं बे समाव 11 सेन्टिमिटारसिम अखा हानो हागौ होननानै बिफाना फोरमायदों आसाम अरुणाचलनि सीमा जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनाय जागोन होननानै गिबिमन्त्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों मिंमां बड'तिनि जाथायनि बेलायाव फोरमायथि फोसावनानै गिबिमन्त्रि बिथाङा मैया बे खोथाखौ फोरमायो बिथाङा बुङोदि सीमायाव थानाय गोबां अनजिमानि गामिनि बेलायाव अरुणाचलनि लोगोसे सीमा जेंना सुस्रांनाय जादों मोनबाल' ओनसोलनि गं 52 गामिया दासिमबो सुस्रांनायनि थाखाय नेनानै दङ बिथाङा बुङोदि सीमा जौगाखां बिफाननि खारिथि बादियै गं 123 गामिनि गं 71खौ लानानै सीमा सुस्रांनाय जादों आद्रा गं 52 गामिनिबो जेंना सुस्रांनायनि फारसे सिगांदों बिथाङा बुङोदि जाय मोनबा ओनसोलाव दाङाबाजि दं बे मोनबा ओनसोलनि थाखाय आसाम आरो अरुणाचलआ दासिम ओनसोलारि समिति दाबाय हादरगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मुआ दिनै गोदान दिल्लीनि बिगियान नब्लाङाव बानजायनाय मोनसे हाबाफारियाव 115 महरगिरिनो 2024 आरो 2025 मायथाइनि संगीत नाटक एकाडेमि मान आरो फेल'शिप रानगोन मान बान्था मोननायफोरनि गेजेराव हादरसानि साबा गागि महरगिरि दं महरगिरि प्रेम उजा बरबायन आरो कथक एबा सल' बुंनाय महरगिरि बिपुल चन्द्र दासआ 2024 मायथाइनि थाखाय एकाडेमि मान बान्था मोननो हादों एखे रोखोमैनो 2025 मायथाइनि थाखाय क्षत्रिय महरगिरि मल्लिका कन्दलि क्षत्रिय संगीत आरो मोसानाय महरगिरि भास्कर ज्योति ओझा आरो बिफावनि बेलायाव चेतना दासआ एकाडेमि मान बान्था मोननो हादों 80 उदांस्रि सानसिम गेजेराव सानसेल' सान आद्रा थाबावनाय समाव हादरनि दाब दाब थावनिजों लोगोसे आसामावबो मुकुब थियारि सोलिदों

खालामनाय जादों। रादाबा एसेनोसै। एसे सम नोंथांमोना दिनैनि रादाबखौ खोनासंनो मोनबाय।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी गिबियावनो गासिबो खोनासंगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय। आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेभनि 411.5 मिटाराव आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव। आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन एआईआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोना उननि हाबाफारिफोरखौ खोनानो मोनलांसिगोन। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु, दानिया साख्रिनि रादाब। आसाम पावार जेनेरेशन कर्परेशन लिमिटेडआव लांदां जानाय एसिस्टेन्ट मेनेजार आरो जुनियर मेनेजार मासिनि थाखाय आर'जलाइ नागिरनाय जादों। बेनिनो एसिस्टेन्ट मेनेजार मासिनि अनजिमाया गासै मोन 35, बेनिनो मोनजि मासिया इलेक्ट्रिकेल आरो सिभिल खोलोबनि बिनायसानि थाखाय, मोनद' मासिया मेकानिकेल दालायनि बिनायसानि थाखाय, मोनब्रै मासिया ह्यूमेन रिसोर्स दालायनि बिनायसानि थाखाय, मोनथाम मासिया इनफर्मेसन टेक्न'ल'जि दालायनि बिनायसानि थाखाय। बिनायसाया थिखानाय दालायाव बिइ, बिटेक एबा 3 बोसोरनि फराफारिनि डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। ह्यूमेन रिसोर्स दालायनि बिनायसानि बिथिङाव बिनायसाया एमबीए एबा पिएचडीएम थानाय जानो नांगोन। दानबान्थाया दानफायाव 37,000 रांनिफ्राय 112,000 रांसिम लोगोसे 14,200 रांनि ग्रेड पे आरो गुबुन गुबुन बानासबो थाफाबावगोन। जुनियर मेनेजार मासिनि अनजिमाया गासै मोन 31, बेनिनो मोनजिनै मासिया इलेक्ट्रिकेल दालायनि बिनायसानि थाखाय, मोनगु मासिया सिभिल दालायनि बिनायसानि थाखाय, मोनद' मासिया मेकानिकेल दालायनि बिनायसानि थाखाय आरो मोननैयै मासिया इनफर्मेसन टेक्न'ल'जि आरो इन्सट्रुमेन्टेशन दालायनि बिनायसानि थाखाय। बिनायसाया थिखानाय दालायाव इन्जिनियारिं डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। दानबान्थाया दानफायाव 25,000 रांनिफ्राय 92,000 रांसिम लोगोसे 12,100 रां ग्रेड पे आरो गुबुन गुबुन बानासबो थाफाबावगोन। गासैबो मासिनि बिथिङाव बिनायसानि बैसोआ 21 बोसोर बैसोनिफ्राय 38 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय वेबसाइटआ जाबाय www.apgcl.org। आर'जलाइ सुफुंना गथायनायनि जोबथा खालारा जुनियर मेनेजार मासिनि बिथिङाव 21 आगस्ट आरो एसिस्टेन्ट मेनेजार मासिनि बिथिङाव 23 आगस्ट। नर्थ इस्ट फ्रन्टायार रेलवेआव लांदां जानायमोन 6,777 एप्रान्टाइस मासिनि थाखाय आर'जलाइ नायगिरनाय जादों। बिनायसाया गोजौ गेजेरारि आन्जादाव उथ्रिसार जानाय आरो लोब्बा थानाय ट्रेडआव जायखिजाया आइटीआईनिफ्राय नेशनेल ट्रेड सार्टिफिकेट मोननाय जानो नांगोन। बिनायसानि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन। बोसोरसेनि फोरोंथायनि समाव बिनायसाया दानफायाव 9,600 राङै स्टाइपेन्ड मोनगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय वेबसाइटआ जाबाय nfr.indianrailways.gov.in। आर'जलाइ सुफुंना गथायनायनि जोबथा खालारा 19 आगस्ट। साख्रिनि रादाबा एसेनोसै। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु, दानिया फोसावनो लादों आबादनि जोथोन आयदा। दिनै आबादनि जोथोन आयदायाव खोनासंहोनो लादों आगोलावनो फोसावखांनाय गजेन चन्द्र बर'आ लिरनानै हरनाय लिरबिदां दाउनि फार्म, मोनसे रां खामायनायनि राहा। बेनि बागै दाउदै, बेदर आरो गांनि थाखाय न'आव फिसिजाग्रा दाउ जेरै दाउ, हांसो, हांसो राजा, सिना हांसो, फारौ, गिनि दाउ, टार्कि दाउ बायदिसिना, बेफोर गासिखौबो पाल्ट्रि बुंनाय जायो। दाउनि फार्म बानायनायनि गाहाय थांखिफोरा जादों दाउदै आरो दाउ बेदरखौ गाव जानायनि अनगायै गुबुनखौबो जाहोनानै मानसिनि देहायाव नांगौ जानाय प्रटीन, भिटामिन आरो मिनारेलफोरखौ मोनहोनाय आरो अरायबो देहाखौ फुंनानै लाखिनाय। दाउदै आरो दाउ बेदर फाननानै रां खामायनाय। साख्रि बाख्रि आरो खामानि नागिरनाय।

नागिरनानै मोनरोङै खामानि गैयै मानसिफोरखौ दाउ फार्मनि गेजेरजों खामानियाव थिसननाय। गुबैयै बेफोर जाहोननि थाखायनो आथिखालाव दाउ फार्मखौ गोबां मानसियानो आजावनानै लादों आरो बेनिफ्राय मोजां फिथायबो मोननो हादों। नाथाय बे खोथाखौ जों मोजाङै गोसोआव लाखिनांगोन दि गोदोनि बादि जोथोन गैयै आलाय सिलाय माब्रै माबा दाउ फिसिनाय हुदाया गोदान मुगायाव समायलिया आरो रज'लिया। दानि मुगायाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन दाउ जोलै लानानै साइन्टिफिक राहाजों फिसिनानै बोरैहाय बांसिन आरो मोजांसिन फिथाय मोननो हायो बेनि सायावसो नोजोर होनाय जादों। आसामनि बांसिन 95% मानसिया दाउदै आरो दाउ बेदर जायो। नाथाय साफ्रोमबो जोंनि देहायाव जिखिनि प्रटीन सानफ्रोमबो नांगौ जायो बेखौ रावबो मोनरोङाखै। आसाम आरो सा सानजानि हादरफोराव सानफायाव 10-12 लाख दाउदै गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय जायो। मानोना आसाम आरो खाथि खालानि हादरफोराव दाउदै जाग्रा मानसिनि अनजिमाया बारा, नाथाय दाउदैनि जोबोद आंखाल। बिदिब्ला नायदो आसामाव दाउ फार्मनि गोनांथिया बेसेबा गोनां। जोंनि थांखिया दा दाउदै बेदरफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै रांफोरखौ फोजोबना लागोन बे नङा। बेनि सोलायै न'आवनो दाउदै दाउ बेदर दिहुननानै जासे जानानै बोरैहाय बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै रां खामायनो हागोन बे थांखियासो जोंनि गोसोआव अरायबो थानांगौ। दाउनि फार्म खुलिनानै मुलाम्फा मोननो लुबैयोब्ला जों दाउदै बुरजा दैग्रा लेयार आरो बेदर बुरजा होग्रा ब्रयलारनि फार्म बानायनांगोन। लेयारनि मादाव ह्वाइट लेग हर्न, रड आइलेण्ड रेड एबा कमार्सियेल हाइब्रिड लेयार्स बेफोरखौ बासिनानै लाजायो। मोजाङै जाहोनानै मोजाङै फिसिनो रोङोब्ला बिदि दाउनिफ्राय बोसोरसेयाव 220-265 दाउदै जों मोननो हागोन। बेनि उनाव 1-2 बोसोराव बिदि मासे दाउनि गिलिरा 2 किल'ग्राम जागोन आरो बेखौ फाननानै जों रां खामायनो हाबावगोन। दाउफोरखौ फिसिनायनि बायदिसिना नेमखान्थि दङ। बेफोरनि मादाव डीप लिटार सिस्टेमखौनो गाहामसिन होननानै गनायनानै लानाय जादों। बे सिस्टेमाव दाउ न'नि पाक्का एबा हानि बिथानि सायाव सिगां 8-10 सेन्टिमिटार रोजा बाला थोरोबसे होनानै समानै थोरायनानै होनाय जायो। बेनि सायाव गोजां बोथोराव 4-5 इन्सि आरो गोलोम बोथोराव 2-3 रोजा थोरोबसे जुजाय दंफां हाखावनाय गुन्द्रा एबा जिगाब बिगाबफोरखौ गुन्द्रा हाफ्लेनानै मोजाङै मारायनानै होबावनाय जायो। बेनि सायावनो दाउखौ लाखिनानै फिसिनांगौ। बाला जुजाय आरो दाउखिफोरा लोगो नांनानै सेवनानै मोनसे लेयार सोमजियो। बेयो इन्सालेटरनि मोनसे खामानि होयो। थामहिनबा दाउ न'खौ गुदुङाव गुसु आरो गुसुआव गुदुं अरायसम दुंब्रुब्रु खालामनानै लाखियो। बिदि बिसिनायाव एरस्रा एरस्रि खालामनानै दाउफोरा आदार खनजानानै नाइट्रजेन, फसफरास, पटासियाम, मेगनेसियाम, सोडियाम, केलसियाम, नियसिस, राइबोफ्लेविन आरो भिटामिन बि मोनजायो। दाउनि न' दाउ न'खौ गोजौ, दै जमा जानो हायै गोरान, सान्दुं नांनाय, बार हाबनो हानाय, बाला हा गोनां जायगायाव खोलाथिं मोखां खालामनानै लुनांगौ। न'आ गिदिर जानांगौ, नाथाय गुवारा 25-35 फुट जायोब्ला मोजां। गोलावखौ नांनाय बादियै फोलावनो हागौ। दरजाया बायजोथिं खेवजानाय जानांगौ। खिरखिफोरा खम जानो नाङा। बिथानिफ्राय बेराखौ 2-2.5 फुट पाक्कानि बानायनानै गोजौ साथिंजाय लहानि वायर नेटिं एबा औवा खामिखौनो जेबायदि हेबनानै होनांगौ। बेराखौ गासै 6-8.5 फुट गोजौ लाखिनांगौ। अखा सारसननो हायैबादि उखुम सायलाखौ बेरानि बायजोथिंजाय 3-3.5 बारा गोलाव लाखिनांगौ। बेरानि नेटिं बाहागोआव हाखावनाय बस्ताखौ ओरैबायदि खानानै होनांगौ जाहाथे नांगौ जायोब्ला जोख्लायनानै एबा बोदलानानै होनो नांगौ। न'नि उखुमा थोरिनि जानांगौ। लेयारनि थाखाय मोनथाम थाखोनि न' नांगौ। बेफोर जाबाय ब्रदार हाउस एबा दाउसा न', ग्रुवार हाउस एबा जोख्लि दाउफोरनि न', लेयार हाउस एबा बिदै दैग्रा दाउ बिमानि न'। दाउनि आदार दाउनि आदारखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो। बेनिनो 20% प्रटीन थानाय दाउसानि आदार, 10-18% प्रटीन थानाय गेजेर थाखोनि देरफुनाय समाव होनाय आदार, 15-16% प्रटीन गोनां बिदै दैबाय थानाय दाउनो होनाय आदार। दाउनि बैसोखौ नायनानै आरो दाउ आदारनि गुनखौ

बिजिरनानै नायना थि समाव थि जखानि आदारखौ दाउनो जगायनो नांगौ। मासे दाउजो दाउआ गर हिसाबै सानफायाव 100 ग्रामसो आदार जायो। दाउनि आदाराव कार्बहाइड्रेट, प्रटीन, फेट, मिनारेल्स, भिटामिन्स थानांगौ। आथिखालाव हाथाय बाजाराव बानायखानानै दोननाय दाउ आदार बायनो मोनो, नाथाय दाउनि आदारखौ न'आवनो बानायनो हायो। ना गोरान, बादाम, बेसर फेरेननानै मोननाय गुन्द्रा, माइ माइरं, गम माइ बायदिसिना फिथाइ सामथायफोरखौ दाउनि आदार महरै बाहायनो हायो। एसे सम नोंथांमोनहा दिनैनि आबादनि जोथोन आयदायाव आगोलावनो फोसावखांनाय गजेन चन्द्र बर'आ लिरनानै हरनाय लिरबिदां दाउनि फार्म मोनसे रां खामायनायनि राहा, बेनि बागै लिरबिदां फरायथिनानै होनायखौ खोनासंनो मोनबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि आबादनि जोथोन आयदायाबो एसेनोसै। नोंथांमोना फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाइनि मिडियाम वेभनि 411.5 मिटाराव आरो FM बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव, आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। लोगोसे निउजन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। दानिया फोसावनो लादों रैसुमै खबाम मेथाइनि आयदा। दिनै रैसुमै खबाम मेथाइनि आयदायाव खोनासंहोनो लादों माखासे हादोरनफावरि मेथाइ। आयदानि गिबियावनो खोनासंदिनि लैथोमा बसुमतारी आरो हान्जानि गाराङाव इन्दिरा बर'आ सुजुनाय नैबे दोंसे हादोरनफावरि हान्जा मेथाइखौ।

रेसुमा खबा मेथाइनि आइदायावनो खोनासंबावदोनि हादरन फाउरि मेथाइ भुवनेश्वर महिलारि आरो रीना दास महिलारिनि गाराङाव रजनी स्वर्गियारिया सुजुनाय नैबे दोंसे जावजा मेथाइखौ।

दानिया आरोबाव खोनासंबावदोनि गुबुनदों सेबाव हादरन फाउरि मेथाइ बिथां भुवनेश्वर महिलारि आरो रीना दास महिलारि बिथांमोननि गाराङावनो मेथाइखौ सुजुदों रजनी स्वर्गियारिया।

मेलेरिया बेरामा रोखोमसे गिलुबालु बेराम नोंथाङा खनले खनले लोमजाबाय थायोब्ला खाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थांनानै थैखौ आन्जाद खालामहो उन्दुनाय समाव थाम्फै अरजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मुसारि सोंनानै उन्दुनो दाबाव लोंनाय दैखौ सरनानै ग्लब ग्लब गोदौजासे फुदुंनानै गुसु खालामनानैसो लोंनांगौ मेलेरिया बेरामा साग्लोबनो हायैबादि नखरनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो जानाय लोंनायाव सांग्रां जाथार मेलेरिया बेरामनि थाखाय देहा फाहामगिरिया सुबुरुन होनाय बायदियै मुलिफोरखौ जाथारनांगौ बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रैसुमैखबा मेथाइनि आयदायाव फैफिनबाय रैसुमैखबा मेथाइनि आयदायाव खोनासंनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना हादोर रनफावरि मेथाइ दानिया खोनासंबावदोनि भुवनेश्वर महिलारी आरो रीना दास महिलारी बिथांमोननि गाराङावनो विजय कुमार गयारिया सुजुनाय गुबुन दोंसेबाव हादोर रनफावरि मेथाइखौ

रेसुमाइखौ बा मेथाइनि आयदानि जोबथारनायाव दानिया खोनासंबावदोनि रजनि स्वर्गियारिनि गाराङाव बिथाङा गावनो सुजुनानै रोजाबनाय नैबे दोंसे गोदान मेथाइखौ।

रजनी स्वर्गियारिनि गाराङाव बे दोंसे गोदान मेथाइजोंनो दिनैनि मेथाइनि आयदा रैसुमै खबामा एसेनोसै। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु सम जानानै फैनाय लोगो लोगो गासिबो खोनासंगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिनखेबसे बावजासि हरफिनबावनानै दिनैनि बर' आफादखौ एसेयावनो थुंगेहोनाय जाबाय। गोजोन्थों।

0: হৈছে মিডিয়ামৱেভৰ 411.5 মিটাৰত 729 কিলোহাৰ্টজত আৰু এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপতো শুনিব পাৰে। আমাৰ এতিয়াৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰণৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে ডিটো ৰুমত দুৰ্লভ কাঠাৰ, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত ধীৰাজ বৈশ্য, বিবেক শৰ্মা, মনোজ হাজৰিকা আৰু আয়ুষ্মান জেচি, ট্ৰান্সমিটাৰত ৰমেন কুমাৰ শৰ্মা, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন, এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰত পপী চান্দ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই জলি ভট্টাচাৰ্য। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু। আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠান হিন্দীত শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आप सभी का हमारे प्रोग्राम हिंदी टॉप में स्वागत है। आज का विषय है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ाना है। EBSB का मिशन देश की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और लोगों के बीच पारंपरिक रूप से मौजूद भावनात्मक संबंधों को बनाए रखना और सुदृढ़ता करना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक गहरे और संरचित संवाद के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक जुड़ाव स्थापित करना, ऐसा वातावरण बनाना जो राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और सीखने का एक वातावरण बनाता था। राज्य इस कार्यक्रम के तहत भाषा अध्ययन, संस्कृति, परंपराएं और संगीत, पर्यटन और भोजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हैं। गुजरात में माधवपुर मेले, मेला जैसे कार्यक्रमों के जरिए पूर्वोत्तर को गुजरात से जोड़ने का जश्न मनाते हैं। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन AKM के अंतर्गत किए जाते हैं। EBSB का प्रमुख लक्ष्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। इस पहल के अंतर्गत विस्तता द एवर फ्लोइंग लेगेसी ऑफ कश्मीर सबसे नया कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न शहरों से गुजरने वाली विस्तता झेलम से जुड़ी कथाओं का जश्न मनाने की परिकल्पना की गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित धारा नामक एक विशेष आयोजन किया गया है। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में किलों के महत्व और उनकी अमिट छाप से जुड़ा किला और कहानियां नामक अभियान भी आयोजित किया गया है, जो हमें हमारी जड़ों से निकट लाने का कार्य करता है। परंपरा संवाद और खुले माहौल में कला का जश्न मनाती हैं। कला को समर्पित सेंट्रल विस्टा में आयोजित कला जली नामक एक सप्ताहता कार्यक्रम नई पहल है। संस्कृति मंत्रालय को देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण तथा मूर्ति और अमूर्ति दोनों की तरह ही की कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है। मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे में 5 ब्यूरो शामिल है। मंत्रालय के 2 संबंध कार्यालय, 7 अधीनस्थ कार्यालय और 34 स्वायत्त संगठन हैं, जिसमें 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शामिल है। मोटे तौर पर यह मंत्रालय संरक्षणा और विकास के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें मूर्ति सांस्कृतिक विरासत, अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की विरासत शामिल है। इसके अलावा मंत्रालय पर गांधी जी की विरासत के संरक्षण और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने और महापुरुषों की जन्म शताब्दी के आयोजन का भी दायित्व है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन करता है। यह देश के संग्रहालय आंदोलन का समर्थन करता है और राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। मंत्रालय

0: अनुदान सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय संग्रहालयों को भी बढ़ावा देता है। अमूर्त धरोहर के क्षेत्र में मंत्रालय प्रदर्शन दृश्य और साहित्यिक कलाओं से जुड़े व्यक्तियों के समूहों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह संग्रहालय आंदोलन का समर्थन करता है और राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। मंत्रालय क्षेत्र संग्रहालयों को अनुदान आधार पर बढ़ावा देता है। समान रूप से मंत्रालय अपने संगठनों के माध्यम से कला और साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने में लगा हुआ है। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में समकालीन प्रासंगिकता के साथ जीवंत रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। मंत्रालय देश में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकालयों का संरक्षक है। यह नीतियां बनाता है और पुस्तकालय विकास के लिए अनुदान आदान प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार के माध्यम से मंत्रालय भारत सरकार के सभी अभिलेखकों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय सारनाथ वाराणसी और लेह के में स्थित संस्थाओं के माध्यम से बौद्ध और तिब्बती संस्कृतियों की रक्षा और संवर्धन करता है। दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय भारतीय विरासत संस्था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाओं के माध्यम से भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय और कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम भी मंत्रालय के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मंत्रालय विभिन्न यूनेस्को सम्मेलनों के कार्यान्वयन और भागीदारी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता करता है। भारत ने 123 देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते किए तथा अगस्त 2024 तक 78 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यकर्ताओं से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत को 22-26 के लिए मूर्ति सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर्गत सरकारी समिति के लिए चुना गया। भारत ने जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति को 46वीं सत्र की बैठक की मेजबानी भी की। वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीतिक उपलब्धियां हुई। यूनेस्को पहली बार भारत की अध्यक्षता में आयोजित संस्कृति G20 कार्य समूह की बैठक का ज्ञान समी साझीदार बना। गुजरात के गरबा को यूनेस्को की अब मूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया और दिवाली को 24-25 की अवधि के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। कोशिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में साहित्यिक शहर और संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया। भारत की 3 डॉक्यूमेंट्री धरोहर तुलसीदास की रामचरितमानस, साहित्यिक लोक लोचन और पंचतंत्र की कहानियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। नमस्कार, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু। এতিয়া শুনক এটি ভজন, শিল্পী অনুপ জলেতা।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতেই সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
4: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का

0: मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
4: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
5: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंग

0: मंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान

0: हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 11.5 মিটাৰত 729 কিলো হাৰ্জত আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্জত। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন AIR মোবাইল এপতো শুনিব পাৰে। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ চিত্ৰগীত অনুষ্ঠানত। পুনতেই শুনাবলৈ লৈছোঁ মণিৰাম দেৱান ছবিখনৰ দুটি গীত। প্ৰথম গীতত এয়া ভূপেন হাজৰিকা।
2: চক্ৰৱৰ্তীয়ে গুৱাহাটীত ঠিক কৰিছে যে মণিৰাম দেৱানখন ছবিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব আৰু তাৰে মিউজিক ডাইৰেকশ্যন মোৰ। সেইকাৰণেই আমি লৰি গ'লোঁ কলিকতালৈ। তাৰপিছত দৌৰা দৌৰি লাগিল, চাইনা এটেক কৰিলে। এই হুলস্থুলৰ মাজত ভূপেন আহিলে। তেখেত ভূপেন এটা সাংঘাতিক
1: মণিৰাম দেৱান ছবিখনত এইবাৰ শ্যামল মিত্ৰা, ভূপেন হাজৰিকা আৰু সহশিল্পীসকলৰ কণ্ঠৰ গীতটি শুনক।
3: অগ্নিভক্তি রক্ত বর্ণে জলে জ্বলিলে মুক্তি পিয়াহি।